उस वेले बाबा दीप सिंह जी साबो की तलवंडी विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं बीड़ां दी लिखाई कर रहे सन, पर जदों उन्हां नूं अमृतसर तों आए एक गुरु दे सिख ने हरिमंदर साहिब दी बेअदबी दी गल दसी तां उन्हां ने कलम छड के दोबारा फिर तेग चुक ली अते जख्मी शेर वांग दहाड़ उठे।

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जा। सात सगत बोलो श्री टुरते हुए पिछली प्यारी अदा।

ख्याल रख तेरी सेवा और तेरे नित नेम विच फर्क ना पवे ता बख्शीशा दा हकदार होवेगा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह इस शब्द विच बख्शीश।

निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, हाय हाय, निर्धन को पाले, गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाए खालसा रहनी दा नाए खालसा अमली जीवन दा नाए खालसा गुणा दा नाए उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन किया है केवल बोल के लंघदे हां अज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैण पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लगा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संगत जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लगा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारा चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करन वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सात संग आज पंजवां निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ये पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवां निर्धन नू पालन दी सेवा लैण सारे कृपा करो

一刷子撒。साढ़े अंदर एक मन है, एक आत्मा है। मन का सवाल लेना लेना, आत्मा का सवाल वंडना वंडना देना। जे तुहानू शौक लग जे, शौक चढ़ जे, प्रसादे पकावा उत्थे जाके वंडा, फलानी चीज करो लवा उत्थे जाके वंडा, थोड़ा कुछ पेर दसवंध फरूट लवा वंडा, ये कते सुभा बन जे, समझो आत्मा चढ़दी कला च जा रही है। हुण देण ते खुशी आती है, शांति मिलती। जब तक सुभा खोना खोना खोना, चंचल मन बलवान है। यदि पौड़ी है जिदा इस नक्शे नाल तलक है, कहते हो खालसा जी आत्मा बलवान है, जिन्हों हुण देण ते खुशी हुंदी, किसे नूं पालण ते खुशी हुंदी है।

0: गुरु साहबानी साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ आओ रसना पवित्र करिए पातशाह दी बख्शी फतेह दी सांझ करो ते सारे गज वज के आखो जी
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: बाबर बादशाह दी करड़ी कैद अंदर गुरु नानक ने पीसियां चकियां सन तत्ती तवी ते बैठ के गुरु अर्जन नीहा कौम दियां कीतियां
1: पक्कियां सन।
0: मीरी पीरी दे मालक पातशाह ने जुलम राज दियां उड़ाइयां फकियां सन तेग बहादुर हिंद दी बन चादर पत्ता लहदियां अनेकां
1: ढकियां सन।
0: जदों सारियां हिलियां तो गल लंगी तेगा गुरु गोबिंद ने
1: चुकियां सन।
0: प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मोहम्मद लतीफ लिखता है द डेथ ऑफ गुरु अर्जुन इज अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सिख्स। भाव गुरु अर्जन देव जी की शहादत सिख इतिहास विच बड़ा वड्डा मोड़ साबित हुई। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी की शहादत तो बाद 11 साल की उम्र चढ़दी जवानी छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद जी महाराज गुरु गद्दी उत्ते बैठे। भाई गुरदास जी लिखते हैं पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरु भारी अर्जन काया पलट के मूरत हरगो बिंद सवारी चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा बड़ योदा
1: बहु पर पुकारी।
0: गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा योदियो चंगे शस्त्र घोड़े अते जवानियां भेट करो। अमृतसर साहिब इलाही फौजी छावनी विच बदल गया। 1609 ईस्वी विच गुरु पातशाह ने अकाल तख्त दी सिरजना कीती। साहिबा ने कहा एक ढाडी जथा मंगवाया जावे। भाई विधि चंद जी नथे अते अब्दुल्ले दे ढाडी जथे नूं लेके आए। जदों नथे ने फेरिया संगी ते गज ते अब्दुल्ले ने मारिया ढड ते हथ तां सूरमियां दे डौले फर्क ला दिते। फिर जदों लगियां धौंसियां ते चोटां तां पंजाब दी सर जमीन गूंज उठी। गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने मीरी ते पीरी भगती ते राज शक्ति माला ते खंडा जोश ते होश शांति ते क्रांति बाणी ते कुर्बानी सब एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठियां हे

खाने क्या शहनशाह सलामत, मैं गुरु कोल नौकर सा, मेरी 6 महीने की तनखा रहंदी सी। जदों मैं तनखा मंगी तां गुरां ने मेनू कोरा जवाब दे दिता। मैं बादशाह सलामत कोल फरियाद करने बारे कहा तां मेरी बेइज्जती करके मार कुट के दरबार विचों तक्के दे के कर दिता। गुरु ने गुस्से विच आके जो कुछ हजूर दी शान दे खिलाफ कहा मेरी जुबान बयान नहीं कर सकती शहनशाह। ओ अपने आप नू सच्चा पातशाह ते हजूर नू झूठा बादशाह कहंदे। जिन्ना भी हो सकिया पेंदे खाने गुरु जी दे विरुद्ध कहा। बादशाह दे दिल विच पहला ही गुरु साहिब वास्ते साड़ा सी। ओ पेंदे खां दीआं गल्लां सुन के भड़क उठिया ते उसने अपने जरनैल काले खां नू बुला के गुरु साहिब ते हमला करन दा हुक्म है।

मैं आया था सा संसार में सेवा सिमरन परपकार करन ली, पर मैं ता कोई भला कर्म ना कर सकिया। मैं बना के रखनी सी नाम जपन वालियां दे नाल, मैं बना के रखनी सी तेरे नाल हे वाहिगुरु। मैं ता किसी नाल भी ना बना के रखी, मैं ता पदार्था नाल ही बना के रखी, इसलिए राख लियो हुण मैं तेरी शरणा। मंदे चंगे जेहो जे हां वाहिगुरु, तू सानू अपने चरणा विच रख लै, बख्श लै।

मैनू ए भोली गया कि ए शरीर ते अगना है, ए शरीर एक मिट्टी दी थेरी, मैं इस नू अमर समझ के सब कुछ करदा रहा, तैनू विसार के पदार्था वल लगा रहा, अमर जान संची ए काया पर ए मिथ्या काची गगरी, ए ता कच्ची गागर है, कच्चा घड़ा है, ए कितना कुछ साबित रहेगा, ए ता तनका लगेगा ते फौरन टूट जाएगा, उच्चारण करो श्री वाहेगुरु, इसलिए मेरी भूल है।

आशा रूपी श्वान बैठे जिदे नाल तृष्णा ते आशा दियां दो कुतियां भी नाल हन क्योंकि मनुख सवेर तो शाम तक अपने धंधियां विच ज्यों ज्यों भौकण लगदा है सारा दिन बीत जांदा है उचारण करो श्री वाहिगुरु ए सवेर तो शुरू हुंदा है अपने कार विहारां विच खचत ते रात तक इस नूं तेरे नाम जपन दा कोई पता नहीं होंदा इसलिए धन गुरु नानक पातशाह कहंदे ने एक सुवान दोए सुवानी नाल पलके पौकै सदा बया आशा ते मनसा दियां कुतियां इस दे अंदर हन जो इस नूं तेरा नाम भुला देंदियां हन कदी ओ कम है कदी उधर तोर देंदियां हन कदी उधर तोर देंदियां हन ए साडी बिरती है उचारण करो श्री वाहेगुरु कूड़ शुरा मुठा मुरदार तानक रूप रहा करतार मैं पत की पंद ना करनी की कार हो बिकड़े रूप रहा बिकराल ए वाहेगुरु साडा ए हाल है पर हुण किवें साडा पार उतारा होवे तेरा एक नाम तारे संसार एक नाम ही तेरा तार सकदा है ते ओ अरदास कीतिया भाई प्राप्त होंदा है चेता समुद्र सागर नीर भरिया ते अवगुण हमारे दया करो किस मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समरथ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां।

तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले संसार च ऐसा चल जाता एक दूसरे दे काम आना जिस काम की जिदी जिनी समर्था होवे बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लैण देण करदा रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता है उन्हूं जाके बेनती करा तू ये कर दे इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार भी सी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मुंह भी वेखना पिया होगा। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउण दी एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउणी है तू वाहगुरू नाल पा के वेख मालिक तू जो चाहे कर सकना है तेरी समर्था महान है कर्ता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैथों कुछ भी नहीं हो सकता जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा अरदास तो हो सकती है और सच्ची गल जानना अरदास च खड़े हो जाना ही रब का काम है ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे में और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण मस्तक न्यो जाए इहदे दो अर्थ हुंदे ने हथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं ये हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन आप करता पुरख हो इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना यह हथ बज गए यह हथ तेरे सामने जुड़ गए इन्हां तो कुछ नहीं होना एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना किसी दूसरे का अभिवादन करना हो आदर करना हो भी हथ बनने लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना बल्कि जिसले मत्था टेक देने इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने मत्था टेकने पातशाह इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता मेरे सोचने ची बड़िया भुलां ने मेरी थां सोचो भी तुसी मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो मैं तुहाडी अरदास जुड़िया होवां अरदास अरदाश्त बेनती कर रहा हां अर्ज कर रहा हां मैं केवल अरदास जुड़िया होवां एक ते जुड़ जाए ना बंदा साहिबां ने विश्वास दृढ़ कराया बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है ये वखरी गल है मुश्किल तो यह है कि यह बड़ी मुश्किल से होती है जुड़ना ही औखा है अरदास जुड़ जाना ही औखा है नहीं जुड़े रहा तो ये वास्ते भी अरदास करिए बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै अपनी भगती नाल मेरे लिए एकाग्र करने की समर्था मैनू बख्श फिर मैं अरदास लगा होवांगा हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा भगती च लगा होवांगा प्रभु का होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं गया वाहेगुरू का कोई काम साडे गोचरा नहीं प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए अरदास करनी आ जावे ना फिर की हुंदा है जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता एक तां हुंदा ना काम हो जाना काम कर लेना काम नबेड़ लेना ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा घबराया हुंदा डगमगाउंदा है ते जे किते काम हो जाए हंभ के बह जांदा है पसीने पूंजदा है सजना मित्रा नूं कहिंदा है शुकर करना काम निबड़ गया बंदा केवल नबेड़ सकदा है लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं सतगुरु कार्ज सवारदा है वड्डी वड्याई अचरज शोभा उस कार्ज विच शोभा हुंदी माण हुंदा है सत्कार हुंदा उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी
ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ

मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे, कृष्ण चरावत गाऊ रे, बिंद्रावन मन

अचल अविनाशी सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस मृत दुर्मत मलनासी सतगुर चरण कमल रित तारन गुर अर्जन गुण सहज विचारन।

0: मेरे नाल है बट हाउ डू आई नो हिज मेरे नाल।
1: बेटा वाहेगुरू नू अपनी जिंदगी विच वसाउणा पैंदा है। यू हैव टू मेक वाहेगुरू अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ।
0: बट हाउ नानाजी?
1: यू हैव टू डिवेलप अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ वाहेगुरू इन योर लाइफ। डिवेलप अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ हिज कॉन्स्टेंट प्रेजेंस। उस्तुत मन में कर निरंकार। इन योर हार्ट योर फीलिंग्स इन योर लव फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन ऑलवेज फील वाहेगुरूज प्रेजेंस। आपदे चरण उसके मार्ग से रखो। अपने मन विच उसनू वसाओ। अपने दिल विच उसनू वसाओ। अपने कन्ना नाल उसनू सुनो। अपनी जीव नाल उसका नाम लवो। अपनी अखां नाल उसनू हर एक विच देखो। यू हैव टू ट्रेन ऑल योर सेंसेस इन बिकमिंग अवेयर ऑफ वाहेगुरू। इन दिस नेक्स्ट शब्द फॉर एग्जाम्पल इट सेज वॉक ऑन वाहेगुरूज पाथ। फील वाहेगुरू। डिवेलप लव फॉर वाहेगुरू। हेयर वाहेगुरू। टेस्ट वाहेगुरू। से वाहेगुरू। टच वाहेगुरू। सी वाहेगुरू इन हिज क्रिएशन ऑल अराउंड यू इंक्लूडिंग इन योर सेल्फ एंड इन एवरी वन अराउंड यू। सी वाहेगुरू इन एवरीथिंग दैट यू डू। वेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग रिमेंबर वाहेगुरू। वाहेगुरू इज विथ यू इन स्कूल। वाहेगुरू इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग एंड विथ इन यू। Just become aware of Vaheguru's constant presence and then you will know that Vaheguru is always with you.